0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 6 గంటలు. ఇప్పుడు హిందీలో అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं. नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई. मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है. इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है. नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी.
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं. सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे. दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया. और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे. इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा. राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है. गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं. श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है. राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है. पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी. ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है. विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है. उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है. राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है. उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया.

आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए, सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: జాగృతి శర్మ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की. लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा. मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी. ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है. और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं. श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की. प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया. सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया. केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है. श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया. राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके. अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं.
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की. गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों. बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं. श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया. गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया. समाचार कक्ष से आनंद पाठक.
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं. श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे.
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है. शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे. शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी. अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं. समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है. मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़

0: करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
3: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
4: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर

0: योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi. Reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 km

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: చిత్ర సీమలు చివరిగా వినండి. మగధీర చిత్రం కోసం అనుజ్ గురువార రీత పాడిన చంద్రబోస్ గీతం, సంగీతం ఎంఎం కీరవాణి.

0: శ్రోతలు ఇంతవరకు చిత్రసీమ సినిమా పాటలు విన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి సమయం 9:30 ప్రకటించిన హిందీ కార్యక్రమం వెంటనే వింటారు.
1: सुबह की सुहानी शुरुआत हो या शाम का सुकून भरा सफर, गीतों, कहानियों, संवादों और मनोरंजन के साथ आकाशवाणी ने हर घर से एक रिश्ता बनाया. मन की बात से लेकर देश के हर कोने तक पहुंचती प्रेरणा की आवाज, जानकारी, संस्कृति और विश्वास का साथी. कोविड हो, सुनामी हो या प्राकृतिक आपदाएं, तब भी एक आवाज हर दिल तक पहुंची, आकाशवाणी. हर बुलेटिन में भरोसा, हर संदेश में जिम्मेदारी. भरोसे की वाणी आकाशवाणी. मीडियम वेव 406.5 मीटर्स अर्थात 738 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये हैदराबाद केंद्र है.

सभी श्रोताओं को जयदीप का नमस्कार। प्रस्तुत है आज का विशेष हिंदी कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे एक विशेष परिचर्चा, 90 दशकों की आवाज, आकाशवाणी हमारी यादों में। आकाशवाणी के 90 वर्षों के इस गौरवशाली अवसर पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको आकाशवाणी के इस महान सफर, उसकी विरासत और उसके अनमोल योगदान से जोड़ते हैं। आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो सेवा नहीं, बल्कि पीढ़ियों की यादों,

0: सुनीता अनगानी और आशीष चौहान इस विशेष परिचर्चा की प्रस्तुति कर रही है सीमा कुमारी। तो आइए आकाशवाणी की यादों और अनुभवों से सजी इस खास महफिल का आनंद लेते हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी की 90वीं स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आज हम एक विशेष संवाद कार्यक्रम लेकर आए हैं। आकाशवाणी जिसने 9 दशकों से देश की संस्कृति, साहित्य, संगीत और शिक्षा, इसके साथ साथ जन जागरूकता को अपनी आवाज दी है, आज भी करोड़ों श्रोताओं के दिलों में अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है। आज की इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रही हैं पद्मश्री सम्मान से अलंकृत प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं समाज सेविका डॉक्टर मंजुला अनगानी जी। चिकित्सा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति उनकी संवेदनशीलता और समाज सेवा के प्रति समर्पण ने उन्हें देश भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। आज की इस परिचर्चा में हमारे दूसरे सहभागी हैं डॉक्टर आशीष चौहान जी, जो कि सीनियर फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट है और जिन्होंने अपनी ही तरीके से समाज में इसके उत्थान के लिए अपना योगदान दिया है। आप दोनों का आकाशवाणी की इस 90वीं स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू
1: जी। सबसे पहले हम अपना कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले हम मंजुला जी आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी का जो 90 वर्षों का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, इसकी जो यात्रा रही है, आप किस दृष्टि से देखती हैं?
2: सबसे पहले 90th एनिवर्सरी का शुभकामनाएं। हमारे जिंदगी में ये रेडियो जो चीज है दैट इज एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड मेमोरीज एंड देन इट इज ए नॉस्टैल्जिक मोमेंट, बिकॉज हम जब पैदा हुए हमारा जो बढ़ते हुए उम्र के टाइम पे और कुछ एंटरटेनमेंट ही नहीं था। एंटरटेनमेंट का मतलब था सबके साथ खेलना और घर में आए तो पुराने सॉन्ग्स को वी यूज टू राइट इन पेपर लिसनिंग टू द म्यूजिक। हम लोग रेडियो में सुनते थे और गाना हम लोग पेपर में वर्ड्स लिख के सीखने की कोशिश करते थे एंड छाया गीत, ओल्ड सॉन्ग्स, बिना का गीतमाला, ये सबसे हम लोग सुन सुन के बड़े हुए थे और हम रिलेट करते थे वो गाने से। अभी तक भी वही गाना हमारे मन में स्थिर है। सो हमारा अभी सो मेनी टाइम्स यू नो अभी कुछ भी सब्जेक्ट का हम सोचते ना उसका रिलेशनशिप एक गाना से रहता है। सो जिंदगी का हर पल हमारे को कभी भी देर इज समथिंग आई वॉन्ट टू टेल यू एज ए डॉक्टर। नाउ इट इज किड्स कीप टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, हम लोग डिप्रेशन है, शायद हमारे टाइम पे भी था, वी डोंट नो। हम जब भी लो फील करते थे हम एक गाने से रिलेट करते थे और वो गाना सुन के हम लोग बाहर आ जाते थे। एक उम्मीद वाले गाने, मोटिवेशन गाने, और 15th अगस्त वैसा आया तो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक वी टू हैव देशभक्ति गाने। एंड जब गणेश चतुर्थी आते तो वी यूज टू लिसन टू ऑल गणेश चतुर्थी। सो वी हैड एवरीथिंग रिलेटेड टू द इवेंट्स इन लाइफ, हमारे जिंदगी का इवेंट से और जिंदगी और जमाने में क्या हो रहा वो इवेंट्स से हमारा लेना देना रहता था। आवर लाइफ वॉज अराउंड रेडियो एज ए चाइल्डहुड।
1: जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मेरे ख्याल से बचपन का इतना सुनहरा अनुभव है ये आकाशवाणी के साथ ही जोड़ा जा सकता है। आशीष जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, जो आज का डिजिटल युग है इसमें आकाशवाणी की जो प्रासंगिकता है वो आप किस तरीके से देखते हैं?
3: भारत एक ग्रामीण प्रमुख देश रहा है।
1: जी,
3: आज हम हैदराबाद में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है। वन ऑफ द बेस्ट सिटीज है एंड डिजिटली कनेक्टेड है इंटरनेशनली। लेकिन जब हम कभी भी भारतीय की बात करते हैं, अभी मंजुला मैम से भी मिले, हमने पूछा कि मैम आपका गांव कौन सा है, आप कहाँ से आए हो, हमारी जो जड़ें हैं वो हमारे गांव में हैं। इसीलिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अभी जो उनकी मन की बात प्रोग्राम आता है वो हम सबको बहुत उद्वेलित से अच्छी तरीके से इंस्पायर करता है कि अगर आपको भारत की आत्मा से जुड़ना है तो फिर आपको भारत के गांव से जुड़ना है और वो काम आकाशवाणी के अलावा कोई नहीं कर पाया है। अभी भी हमारे पास ऐसे ऐसे एरियाज हैं, अगर हम बहुत कॉर्नर में जाके बात करें, बहुत इंटीरियर में जाकर के बात करें तो बहुत से गांव हैं जहां पे रेडियो के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि डिजिटल वर्ल्ड है, सेलफोन स्मार्टफोन है, लेकिन मुझे पता है कि मैं गुंडाला, साइनपल्ली और पता नहीं कहां कहां इंटीरियर्स में जा चुका हूं, वहां पे टीवी भी नहीं था और अभी भी नहीं है। तो अगर हम लोग ट्राइबल्स की बात करें, इंटीरियर्स की बात करें, तो आकाशवाणी अभी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ज्यादा इम्पॉर्टेंट है देन एनीथिंग एल्स। एंड इसमें हमको अपने विविधता के साथ साथ आगे बढ़ते रहना है। ऑल इंडिया रेडियो ने, आकाशवाणी ने पूरे भारत को एक माला में पिरोया है। आप हम लोग भले ही कहते हैं ना साहब, कोस कोस में बदले वाणी, हर कोस पे वाणी, तो वाणी और पानी तो बदलता रहता है लेकिन हर उस बदलाव के साथ साथ हमारी भाषा को, और आजकल डिस्कशन में बहुत होता है ना हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, वो सब, इस हर एक पूरी माला को अगर किसी एक चीज ने पिरोया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रही है।
1: जी, यानी हर वाणी को अपने में समाया है वो आकाशवाणी ही
3: से
1: है।
3: कश्मीर और ईस्ट से वेस्ट, गुजरात से बिल्कुल कॉर्नर मोस्ट प्लेस तक के लिए आकाशवाणी है जो कि अभी तक बहुत ही बहुत प्रसांग

0: लॉजिक भी रही है, एंड यस देर इज नो डाउट अबाउट इट. तो अभी आने वाले कई दशकों तक, 90 साल हुए हैं, हमको लगता है बूढ़े से हो गए हैं, बट अभी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं और बहुत नए आयाम को हमको पाना है.
1: जी, और एक
0: हाँ
1: चीज हुआ है कि जो भी इन्फॉर्मेशन किसी को देना है, पेपर न्यूज़पेपर तो नेक्स्ट डे आएगा, लेकिन एक ही था जो इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन सबको, लाइक डॉक्टर आशीष सेड, कोने कोने को दिलाना था, इट वॉज आकाशवाणी.
2: जी, आपने बहुत ही ये प्रासंगिक बात कही है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे आप दोनों ने अभी मेंशन किया है, चाहे आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जो आज भी ऐसे उस सुदूर कोने में पहुंचती है जहां पे टीवी अवेलेबल नहीं है. जी मंजुला जी, आप एक चिकित्सक होने के साथ साथ समाज सेविका भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आकाशवाणी जैसे माध्यम ने जन स्वास्थ्य जागरूकता में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है?
1: आजकल एक्चुअली लाइक यू सेड, डिजिटल वर्ल्ड में सबको
2: जी
1: सब कुछ मालूम है एंड दे थिंक दे नो एवरीथिंग, बट स्टिल द राइट इन्फॉर्मेशन, राइट अवेयरनेस इज वॉट इज नीडेड. सो सही सही किसी भी बीमारी के बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए आकाशवाणी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज अगर किसी को भी सर का दर्द भी आ गया, सब लोग ऑनलाइन चले जाते हैं और सीखते कि मेरे को कैंसर है, ब्रेन का कैंसर है, उतना तक जंप नहीं करना. और एक जो माध्यमिका है इन बिटवीन द डिसीज एंड द अवेयरनेस इज अ डॉक्टर. सो डॉक्टर्स को लेके आना लाइन पे और सही जवाब दिलवाना, क्वेश्चन आंसर्स को लेना और उसका जवाब दिलवाना. एक क्वेश्चन को एक डॉक्टर आंसर करे तो दैट विल बी आंसरिंग सो मेनी ऑफ पीपल. सो द राइट इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एंड उसका इलाज क्या है, उसका इन्वेस्टिगेशन क्या है, क्या नहीं करना, क्या करना है. और आजकल का लाइफ स्टाइल कैसा, सब कुछ चीज चेंज कर दिया है और लाइफ स्टाइल के चेंज की वजह से क्या क्या बीमारियां बढ़ गए हैं और उसको कैसा कम करना. आजकल वी आर सीइंग लाइक पीएमओएस बोल के आ गए हम
2: जी
1: लोग.
2: जी
1: सो पीएमओएस कैसा क्यों आया, सबका स्ट्रेस, सबका पोल्यूशन के जो एक्सपोजर हो रहा है और डाइट में जो चेंजेस हम लोग कर लिए हैं और एक्सरसाइजेस जो नहीं कर रहे हम लोग और एडिक्शंस, ये पांच चीज जो है ना जितना खराबी करिए. उसके खराबी के बारे में कितना भी बोले पेशेंट्स और सब लोग भी आ ये सब तो सब लोग बोल देते हैं, लेकिन जिसके वजह से आजकल 20 साल के बाद जो हम लोग लापरवाही करी है उसके वजह से जो जो कैंसर्स और एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, पीसीओएस, पीएमओएस ये सब जो बढ़ गया है उसके बारे में समझाना इम्पोर्टेंट है. और हमको ये भी बोलना है कि प्लास्टिक्स की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है और कैसा कैंसर बढ़ गए हैं, और उसको कम करने के लिए इवन जो मेंस्ट्रुअल पैड्स जो है
2: जी
1: जिसमें
2: बिल्कुल
1: प्लास्टिक्स है उसको कैसा अवॉइड करना, ये सब इन्फॉर्मेशन कैसा मिलेगा सबको. वी थिंक वी आर प्रोग्रेसिंग, वी थिंक वी आर डूइंग गुड थिंग बाई चेंजिंग फ्रॉम द क्लॉथ पैड टू मेंस्ट्रुअल पैड विच इज प्लास्टिक्स, बट वी हैव डन रॉन्ग थिंग. सो वी शुड अवॉइड प्लास्टिक्स. सो
2: जी
1: दिस अवेयरनेस इज समथिंग, इफ इट हैज टू रीच टू एवरीबडी इट इज थ्रू द मीडिया,
2: यस
1: एंड द मीडिया का वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को सही पहुंचना है उसके लिए आकाशवाणी बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेती है.
2: जी यानी आपने ये एक ही लाइन में बात कह दी कि आकाशवाणी की जो विश्वसनीयता है, जो
1: यस
2: भरोसा है, वो अभी भी बना हुआ है,
1: राइट.
2: और ये सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है. जैसे कि उन्होंने भी बात बताई हमें कि जन जागरूकता जो है फैलाना है, तो उसके लिए आकाशवाणी की जरूरत है. आशीष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण की जब बात आती है, तब आकाशवाणी कितना योगदान दे रहा है?
0: बहुत ही ज्यादा, और उसकी बात करना भी कठिन होगा. पहली बात तो मीडिया में मैं आकाशवाणी को भीष्म पितामह मानता हूं.
2: जी
0: जब कोई भी डिजिटल मीडिया कुछ भी नहीं था, आकाशवाणी तब से रही है, हमारा सबसे पहला जो मुखर रूप रहा है वो आकाशवाणी ही रही है. फिर शिक्षा एंड संस्कृति में मुझको अच्छी तरीके से पता है, हम लोग रेगुलरली संगीत के प्रोग्राम इसके थ्रू सुनते आए हैं, बल्कि इंटरटेनमेंट को भी अगर हम लोग साथ साथ ही लगा लें तो सही तरीके की शिक्षा, जो राइट मैसेज दिया. क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज मैंने नोट करी है, आप लोग जब भी कोई प्रोग्राम देते हैं तो आप उसमें अच्छी तरीके से उसको आप काफी परतों से गुजार करके देते हैं.
2: जी
0: यू आर वेरी
2: बिल्कुल
0: मच सोशल कॉन्शियस कि सर ये कुछ अल्फाज ठीक नहीं होंगे, हमारा काम ही है कि गलती से भी इससे कोई गलत मैसेज ना जाए.
2: बिल्कुल सही
0: और जो हम
2: बात
0: लोग
2: है.
0: रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं इसमें भी आपने बिल्कुल एक एक छलनी से छान करके सिर्फ और सिर्फ स्नेह और मधुरता के साथ राइट चीजें आपको पहुंचानी है. तो शिक्षा को आकाशवाणी ने दूरों दूरों तक पहुंचाया हुआ है और संस्कृत को अपने साथ रखा ही है. क्योंकि भले ही अभी मंजुला मैम ने बोला ना कि वो 7 दिन का राजकीय शोक हुआ करता था, लेकिन हमारी संस्कृति थी कि बताना था कि भाई हमको नव रंग है, उस नव रंग को हमारे अपने बच्चों को सिखाना है, और उसमें एक रंग जो होता है वो शोक का भी होता है.
2: जी बिल्कुल
0: तो आकाशवाणी शुरू से ही उसने अपने नवरंग को एक साथ में लेकर के चली है. चाहे 1983 का हम लोग वर्ल्ड कप मांग ले, चाहे हम लोग 1984 का एशियन गेम्स भी मांग ले, मुझको तो अभी भी याद है कि हम लोग ट्रांजिस्टर को लेकर घूमते थे. क्योंकि यस जितनी

0: एजुकेशन हमको उससे मिली है, जितनी कनेक्शन हमको आकाशवाणी से मिली है, हमारे जमाने में तो कुछ और था ही नहीं। एंड
1: जी
0: आज के जमाने में भी मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप अपनी पीआर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आकाशवाणी से बेहतर, जो कि दूर दूर तक पहुंचता है,
1: बिल्कुल
0: वो बहुत पुरानी कहावत है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो जहां पर है कोई प्राणी वहां पहुंचेगी आकाशवाणी।
1: जी,
0: तो ये
1: बहुत
0: चीज मानना जरूरी
1: बहुत
0: है।
1: को बहुत को। मैं थोड़ी व्यक्तिगत सवालों पे
0: हाँ
1: आऊंगी
0: जी
1: मंजुला जी। पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने का वो जो क्षण था, वो आपके लिए कितना भावुक और प्रेरणादायी था?
2: राइट वर्ड इज डेफिनेटली भावुक। जी
0: जी
2: सो फर्स्ट जो होता है वो भावुक, फर्स्ट थिंग इज सडनली इट विल बी कमिंग एज अ सरप्राइज, बिकॉज वी डोंट, किसी को भी मालूम नहीं होता जब तक अनाउंस नहीं होता कि किसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, वो सब। सो भावुकता तो बहुत होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद प्रेरणा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कम्स विद अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। देर इज सो मेनी एक्सपेक्टेशंस विच कम विद दैट। सो सबका देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, और जब हम लोग जो भी बोलते हैं उसके ऊपर एवरीबडी विल बी लुकिंग एट इट विथ सो मच ऑफ रेस्पेक्ट एंड द आउटकम ओरिएंटेड। सो वी हैव टू बी मोर केयरफुल एंड मोर रेस्पॉन्सिबल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट इज भावुकता इसलिए है कि हम लोग जो भी काम करते रहते, जो आउटकम के लिए काउंट करते, इट इज नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। पेशेंट को जो अगर राउंड प्रॉब्लम है, हम उसके लिए टेक्स्ट बुक के इलाज नहीं देख के, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के राउंड सोल्यूशन देने की कोशिश करते। जब पेशेंट बिकम्स ऑल राइट, दैट्स वेन न्यू इनोवेशन कम। सो वेन सो मेनी डॉक्टर्स आर देर हु डू ऑल दैट, बट वो सही पहुंचना, सब उसके लिए कुछ अवार्ड मिलना इज लाइक अ मोटिवेशन टू डू मोर वर्क।
1: जी
2: सो मोर वर्क जब करते हैं, देर आर फ्यू थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट। इट हैज टू बी एथिकल, इट हैज टू बी, शुड नॉट डू एनी हार्म, सेफ्टी ऑफ द पेशेंट कम्स फर्स्ट, एंड इट हैज टू बी कम्फर्टेबल फॉर द सर्जन हु इज डूइंग, एंड इट हैज टू बी रेप्लीकेबल। मीन्स जो भी हम लोग एक टेक्निक शुरू करते हैं, एम हमारे से मर जाना नहीं चाहिए, इट हैज टू गो एंड इट हैज टू इम्प्रूव द आउटकम ऑफ द ह्यूमन मैनकाइंड। सो ये जब सब सोच के जब करते रहते हैं, मेनी इनोवेशन स्टार्ट कमिंग। एंड आई ट्रूली बिलीव इनोवेशन इज नॉट स्टार्टिंग समथिंग न्यू, इट कैन बी दैट कुछ और फील्ड में।
1: सही
2: अभी
1: बात।
2: सोचिए डिफेंस में जो काम कर यूज करते, वी यूज दैट इन टू हेल्थ केयर समटाइम्स। सो ऐसा कुछ भी चीज, ए जो है इनर्ट है, सिलिकॉन, सिलिकॉन इज इनर्ट। अभी सिलिकॉन को यूज करके मेंस्ट्रुअल कप यूज करे तो पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, इनर्ट रहता। इस सोच आना और शुरू करना इज एन अगेन इनोवेशन। सो इनोवेशन इज ज्वाइनिंग टू डिफरेंट डॉट्स विच आर देयर इन अदर फील्ड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर द आवर बेस्ट आउटकम इन हेल्थ केयर।
1: जी
2: सो ये सब मायने रखते हैं व्हेन वी टेल, व्हेन आई टेल, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट आकाशवाणी और उसका कितना असर रहेगा। सो व्हेन वी टॉक, अभी देखिए एग्जाम्पल बोलती हूँ ऑर्गन डोनेशन का।
1: जी बिल्कुल
2: हम लोग कितना भी बोले प्लीज गिव ऑर्गन्स, उतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन जब साहब जब आके बोले कि आपका आंख बहुत इम्पोर्टेंट है, आप डोनेट करिए। सो
1: बिल्कुल
2: जो
1: सही
2: बोल
1: बात।
2: रहा है वो उसका बहुत मायने रखता है।
1: जी
2: उसके बाद ऑर्गन डोनेशन हैज इंक्रीज,
1: जी
2: उसके बाद आइस दे हैव स्टार्टेड
1: जी
2: डोनेटिंग, बाकी सब ऑर्गन स्लोली इम्प्रूव हुआ।
1: जी
2: सो ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारी चीजें बोलते, फिर भी उसका पेशेंट का ट्रस्ट एंड एवरीथिंग विल इंक्रीज इफ ए पर्सन हु इज बीन अवार्डेड टेल्स। सो दैट गिव्स अस ए लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी।
1: जी यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान बनाने की जो मतलब अपनी यात्रा है या फिर
2: यस
1: जो आपका सफर रहा है वो भी चुनौतीपूर्ण है। मतलब
2: डेफिनेटली
1: आपको वो बोलते हैं ना कि अथॉरिटी कम्स विद लॉट ऑफ
2: राइट।
1: रेस्पॉन्सिबिलिटी।
0: एंड
1: जी
0: पद्मश्री के साथ जो अब मैम हमारे साथ है, हमारे सीनियर हैं, आई फील
1: जी
0: वेरी ऑनर्ड। पिछले
1: बिल्कुल
0: 10 साल का मेरा और उनकी जान पहचान है।
1: रेस्पेक्ट कम्स ऑटोमेटिकली।
0: बिल्कुल
1: यस
0: बिल्कुल।
1: जी
0: एंड हैदराबाद और हमारा तेलुगु लैंड तो बहुत ब्लेसेड है, यहाँ से बड़े बड़े पद्मश्री डॉक्टर्स निकले
1: जी
0: हैं, डॉक्टर
1: बिल्कुल
0: साई बाबा गौड़, डॉक्टर हनुमंत राव, और अभी 2 दिन पहले ही डॉक्टर विजय आनंद
1: नारायण
0: रेड्डी
1: रेड्डी
0: सर
1: जी वीरा
0: और
1: जी
0: डॉक्टर जीवी राव को मिला है,
1: जी
0: एंड फिर पद्म विभूषण
2: नागेश्वर रेड्डी
0: डॉक्टर डी
1: साहब
0: नागेश्वर रेड्डी सर आए
1: जी
0: हैं। तो ऐसे
1: जी
0: बड़े बड़े जो नाम आते हैं, तो हमको आकाशवाणी हैदराबाद से कनेक्ट होते हुए और यहाँ पे बैठ के बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है, और वो
1: जी
0: ऑलमोस्ट हर कोई यहाँ पे आ भी चुका है।
1: जी बिल्कुल
0: तो
1: जी
0: आकाशवाणी ने ना सामान्य लोगों को प्रमुख लोगों से बहुत ही अच्छी तरीके से जोड़ा है, एंड मन की बात उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एंड वी
1: जी
0: फील
1: जी
0: हैप्पी अबाउट
1: बिल्कुल
0: इट।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी जैसे कि मंजुला जी बता रही थी, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगी मैम कि खासकर पोलियो उन्मूलन जो अभियान
0: राइट
1: रहा है उसमें आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। जो दो बूंद
2: रोटरी
1: जिंदगी के वो मतलब एक जो लाइन थी जो अमिताभ बच्चन
2: आई
1: जी
2: नो
1: बोला करते थे, वो मेरे ख्याल से पोलियो उन्मूलन का एक माइलस्टोन था।
2: राइट जी, पोलियो का क्या हो गया है, बहुत सारे उम्मीदवार अंदर आए हैं, गवर्नमेंट वांट्स टू डू इट, लेकिन नुक एंड कॉर्नर में जाने के लिए बहुत लोगों का एक है, लाइक यू सेड अमिताभ बच्चन साहब बोले, सब लोग उठ के देखते क्या बोल रहे हैं अमिताभ बच्चन सर, हमारा आइडल।

0: దెన్ ఉస్కే బాత్ సున్తే, సో సంబడి హూ ఇస్ టెలింగ్ దట్. నెక్స్ట్ రేడియో ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ విచ్ విల్ స్ప్రెడ్, దెన్ సంబడి హ్యాస్ టు ఫైనాన్స్ దట్, సంబడి హ్యాస్ టు గెట్ ఇట్. సో రోటరీ హ్యాస్ కమ్ ఫార్వర్డ్, హ్యాస్ టేకన్ యాస్ దేర్ మెయిన్ థింగ్. సో ఈ చార్ లోగ్ ముల్కే జో నౌ వీ హ్యావ్ పోలియో ఫ్రీ ఇండియా, సో వీ షుడ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద కంప్లీట్ అసోసియేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్.
1: अभी हम लोग जैसे कि अपने 90 साल की गौरवमयी यात्रा का सेलिब्रेशन भी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, उसमें ये एक बहुत बड़ा योगदान रहा है आकाशवाणी का, रोटरी के साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके पोलियो उन्मूलन का. और ऐसे बहुत से कार्य आगे भी हो सकते हैं. एज ए डॉक्टर आप लोग ये
0: तो मेरे हिसाब से सीमा वी हैव टू गेट बैक टू एचआईवी अगेन.
1: जी
0: पहले रेडियो में बहुत आता था कि अबाउट पुली राजा को एड्स आता क्या बोल के, उसके बाद बहुत कम हो गया था एड्स एचआईवी. एड्स नहीं बोलूंगी, अभी भी एड्स कमी है लेकिन एचआईवी बढ़ गया है. सो सेकंड ग्राफ इज कमिंग नाउ, सो आई थिंक टाइम फॉर गवर्नमेंट इज एक्चुअली टेकिंग नोटिस ऑफ इट. सो आई थिंक टाइम,
1: मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम के जरिए जो है अगर हमारे हायर अथॉरिटी सुन रहे होंगे तो वो जरूर ही
0: टॉक अगेन अबाउट एचआईवी.
1: आशीष जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो तेजी से सोशल मीडिया की ओर बढ़ रही है, ऐसे में आकाशवाणी जैसे विश्वसनीय माध्यम से अगर युवाओं को जोड़ना है, उन तक पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?
2: से जो दिखता है वो बिकता है, हम लोग वो जानते हैं, ये एक एमबीए की टैगलाइन है. अब आकाशवाणी को हम सुनते हैं, तो अगर आप मेरे से एक मैनेजर की तरह आंसर चाहेंगे तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आकाशवाणी को थोड़ा सा अपना कदम मीडियाज पे या फिर कुछ कुछ ऑडियो क्लिप्स तरीके से करके इसमें ऐसी जगह में चलाना पड़ेगा. सी जो जेंजी है, जेंजी अभी भी वो एफएम की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, जेंजी के पास दूसरे माध्यम बहुत है, तो हमको बदलना तो बहुत जरूरी है. बदलाव हर किसी को लाना है, तो आकाशवाणी को भी उस थोड़े से जेंजी से कनेक्ट होने के लिए कुछ ना कुछ और माध्यम को यूज करना है. जो जमाना है वो आजकल कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन का है. अगर हम लोग कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट नहीं करेंगे, जैसे आकाशवाणी को, प्रसार भारती को, दूरदर्शन के साथ, आपको म्यूचुअल, हमको जो है वो टीम वर्क के साथ काम करना है. अभी हम लोग जो मैं देखता हूँ एक अमूमन कंज्यूमर के हिसाब से, श्रोता के हिसाब से, मैं दोनों को अलग अलग देखता हूँ, क्योंकि भाई दूरदर्शन दूरदर्शन है एंड आकाशवाणी आकाशवाणी है, वो हमको सुनने के लिए देखने के लिए. हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जहाँ पे इन दोनों का अच्छा सा समन्वय हो और हम दोनों के प्रोग्राम को एक दूसरे में रेप्लिका करके देख सकें. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ. आज कोई भी टैक्सी ड्राइवर है वो तीन तीन ऐप साथ में लेके चलता है ना, आपको पता है, हम और आप भी यूज करते हैं, आप और मैं, हर कोई तीन तीन ऐप यूज करते हैं. इसी तरीके से आकाशवाणी को भी दूसरे माध्यम से समन्वय करके अपने को उस थोड़े से ढाल चाल में बदल करके हमको प्रेजेंट जेनरेशन के उपयुक्त बनाना है, कि जैसे दे फाइंड इट कि वी आर रेलेवेंट. चेंज इज द ओनली थिंग विच इज परमानेंट, और हमको पसंद नहीं लेकिन जरूरी है.
0: यू वांट मार्केटिंग टू बी डन,
2: एब्सोल्युटली मार्केटिंग, तो उसको दो राय
0: में वर्ड्स में है कि आकाशवाणी को खुद को मार्केट करने का दिन आ गया है.
2: यस,
1: वाओ, दैट्स अ वेरी वंडरफुल लाइन मैम. जो चिकित्सा क्षेत्र है, विशेषकर लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी में आपकी उपलब्धियां जो है वो युवा डॉक्टरों के लिए प्रेरणा है, तो आप जो युवा डॉक्टर है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: I just want to tell one thing. There is no shortcuts to success. अभी आजकल के बच्चे जो है ना, जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाह रहे. सीखो पहले, पहले सीखना है. That is important. उसमें ज्यादा if you spend, see it's always like this. You have a latent period किसी भी success के लिए, उसके बाद accelerated phase रहता है. ये latent period है तुम्हारा सीखने का दिन. जितना तुम अच्छा nuances, फाइन टेक्निक को सीखते हुए और टेक्नोलॉजी को लेते हुए, टीम वर्क के साथ काम करते हुए, अच्छा ट्रेन करके, अच्छा टीच करके आगे जाओगे तो सक्सेस नहीं आने का सवाल नहीं है. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू बी. तुम्हारा गोल क्या है? यू वांट टू बी ए गुड डॉक्टर, यू वांट टू बी अ रिच डॉक्टर. लेट मी बी वेरी क्लियर. सो रिच बनने के लिए दिस इज द रॉन्ग फील्ड. You should go into maybe real estate or some other business where you can make money, more money. But if you want to be a good doctor, money will automatically come. जितना चाहिए उतना आएगा कंफर्टेबल रहने के लिए. सो इफ यू वांट टू बी अ गुड डॉक्टर, बिकॉज हम लोग जब मेडिसिन में ज्वाइन करते हैं हमारा एक ही रहता है कि लोगों को सेवा करना. उसके बाद कितना कितना चेंज हो जाते वो अलग बात है, लेकिन जब एंटर करते सबका बहुत नेव हार्ट्स रहते. सब एट 16 ईयर्स एवरीबडी विल थिंक मैं सबको बीमारी को कम करूंगी, नहीं तो कैंसर को कम करूंगी, नहीं तो हार्ट डिजीजेस को कम करूंगी, ऐसे यही इसमें आते हैं. सो उसको सही संभाल के रखना है और पेशेंट को ठीक करने के लिए हम लोग सीनियर्स से सही सीखना है. सीखने के बाद जो सीखे है उसको सही सही लगाना है. सो व्हाट आई फील इज, डू नॉट डू थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरी फॉर द पेशेंट. द राइट ट्रीटमेंट टू द राइट पेशेंट इज व्हाट यू शुड डू.
2: नो शॉर्टकट टू सक्सेस, मैम ने बोला है, वो बहुत जरूरी है. आज के

0: युवा के लिए मैं एक छोटा सा एक आह्वान करना चाहूंगा, सोशल मीडिया से आप जितना दूर रहें उतना बेहतर है। देखिए चीज क्या है, एक नेसेसरी इविल इज द राइट वर्ड, नेसेसरी इविल है, होना चाहिए, लेकिन ये जो सेलफोन है या मोबाइल है वो इट्स अ बिगेस्ट ब्लेसिंग टू द मैनकाइंड एंड अ बिगेस्ट कर्स एज वेल। तो मैं जित भी माता पिता इस डिस्कशन को सुन रहे हूं, मैं चाहूंगा कि वो हमारे युवा को आकाशवाणी से कनेक्ट करें, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, क्योंकि आजकल जो नई मूवीज आ रही हैं उसमें भी खून खराबा इतना दिखाया जा
1: जी
0: रहा
1: बिल्कुल
0: है।
1: सही बात
0: तो
1: है।
0: सही मीडिया से कनेक्ट करना जरूरी है, एंड आकाशवाणी से ज्यादा साफ स्वच्छ एंड एक बैलेंस्ड मीडिया जो है वो और कोई भी नहीं है। एंड इसीलिए मैं आपको 90 साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और पूरी आकाशवाणी टीम को देना चाहूंगा कि कंटिन्यू एंड कीप शाइनिंग मोर एंड मोर।
1: जी अब चलते चलते मंजुला जी, आप क्योंकि आप महिला हैं, सबसे बड़ी बात, समाज सेवा, चिकित्सा और परिवार, ये तीनों में समन्वय जो है वो संतुलन बनाने का आपका मंत्र क्या है और आपकी चुनौतियां क्या क्या रही हैं?
2: सी दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। ये बार बार सब लोग पूछते रहते हैं, बिकॉज ये जो उम्र है जो 25 का और 45 के बीच में, दिस इज द टाइम वेन योर फैमिली इज इक्वली इंपॉर्टेंट, करियर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। उसके बाद 45 के बाद तो करियर का तब शुरू करने का मतलब नहीं है, बट द प्रॉब्लम कम्स बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बैलेंस देम। हम लोग बैलेंस क्यों करना चाह रहे हैं? बिकॉज बैलेंस का मतलब है दोनों को ऑपोजिट साइड रखना, रख के एक एक कम हो गया, एक ज्यादा हो गया। वेन यू पुट इट डायनामिक, डायनामिक का मतलब है आज मेरा फैमिली इंपॉर्टेंट है, कल मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, दैट इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आज हमारा एक पेशेंट सुबह 7:30 को एक्टॉपिक प्रेगनेंसी आया, समझो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी इज एन इमरजेंसी,
1: जी
2: तो उस दिन मेरे को हॉस्पिटल जाना इंपॉर्टेंट है, मेरी बच्ची को स्कूल में छोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है।
1: नहीं
2: नहीं है मतलब इट इज नॉट दैट आई शुड नॉट डू, बट डेलीगेशन ऑफ वर्क।
1: जी
2: सो देन वी नो यू आर इन अ प्रोफेशन विच माइट नीड यू इन इमरजेंसी, एनी टाइम इन द डे और नाइट यू शुड डेलीगेट वर्क, इन द सेंस यू शुड हैव समबडी टू कुक इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, और यू शुड हैव समबडी टू टेक ड्राइव द चाइल्ड और एनीथिंग इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट। नीड नॉट बी अ ड्राइवर और अ कुक और अ टीचर, इट हैज टू बी समबडी हु कैन डू द थिंग्स। सो पहले जॉब प्रोफाइल क्लियर रहना है और डेलीगेशन रहना है, एंड आई ऑल्सो बिलीव द माँ बेटी का और माँ बेटे का जो भी रिश्ता है दैट इज वेरी वेरी फ्रेजाइल। एक भी चीज हमारे उम्र के हिसाब से हमारे समझने का लेवल अलग रहता है, बच्चे के समझने का लेवल अलग रहता है, एंड आई शुड नॉट थिंक ऑफ बींग ए सुपर मॉम, सुपर टीचर, सुपर कुक, सुपर वाइफ,
1: जी
2: एवरीथिंग वाइट यू
1: बिल्कुल
2: आई हैव टू बी।
1: बिल्कुल
2: इफ आई ट्राई टू टीच माई किड, मेरे को गुस्सा आ सकती है बिकॉज मेरे पास टाइम कम है, इतना भी समझ में नहीं आ रहा क्या, ऐसा आवाज में अगर मैं उसको बच्ची को बच्चा को बोले तो वो रिश्ता बिकम स्ट्रेन्ड, दैट इज द
1: स्ट्रेंड।
2: वर्ड।
1: यस मैम
2: सो दैट इज वाई आई टेल पेरेंट्स, डोंट ट्राई टू टीच योर किड्स, दे नो। जो टीचर को आजकल के बहुत सारे मॉन्टेसरी स्कूल से सब जो टीचर्स आर ट्रेन टू टीच फॉर वन फर्स्ट क्लास, नहीं तो नर्सरी, ऐसा लोगों को टीच करने तो जो वो लेवल पे आते
1: बिल्कुल सही
2: और
1: बात
2: जिसके
1: है।
2: पास टाइज। सो व्हाट माय थिंग इज, ऑल ऑफ यू वुमन आउट देयर हु आर लिसनिंग टू इट, डोंट ट्राई टू बी अ सुपर ह्यूमन बींग, वी आर नॉट मेड
1: वाह
2: टू बी लाइक दैट, गॉड
1: जी
2: हमारे को बनाया गया है हमारा काम करना। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड योर जॉब प्रोफाइल, सेकेंड थिंग डेलीगेट वर्क, थर्ड थिंग कीप इट डायनामिक। अगर पेरेंट टीचर मीटिंग रहा यू दैट इज योर प्रायोरिटी, सो हॉस्पिटल का इंतजाम करके यू माइट हैव टू गो टू पेरेंट टीचर मीटिंग,
1: जी
2: बट वेन यू आर लाइक दिस टॉक टू योर टीचर, सी दैट यू गो फर्स्ट एंड यू फिनिश इट एंड गो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम देयर। सो आई
1: जी
2: थिंक टाइम इज द एसेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इज वन थिंग विच एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड, एंड कीप द रिलेशनशिप डायनामिक, डोंट कीप इट इन अ बैलेंस, इफ इट इज बैलेंस इट इज ऑपोजिट, डोंट पुट इट ऑपोजिट।
1: वाह सच अ वंडरफुल लाइन मैम, आप दोनों ने ही हमारे स्टूडियो में अपना कीमती वक्त दिया। इसके साथ ही साथ जो आज की बातचीत रही है इसमें हमने जाना कि कैसे आकाशवाणी ने पीढ़ियों को जोड़ने, समाज को जागरूक करने और संस्कृति को सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर मंजुला अंगानी जी के संघर्ष, समर्पण और उपलब्धियों ने हमें यह संदेश दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सेवा भावना से हम राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। डॉक्टर आशीष चौहान जी ने 90 वर्षों की यह जो गौरवपूर्ण यात्रा है उसको मन की बात के साथ जोड़ के इसको जन जन तक ज्ञान, संस्कृतियों और संवेदनाओं की आवाज को बताते हुए कैसे शुभकामनाएं दी, ये बहुत ही सराहनीय है। आप दोनों ने अपनी कीमती वक्त निकालकर आकाशवाणी हैदराबाद को दिया, इसके लिए बहुत बहुत
2: धन्यवाद। थैंक यू,
0: धन्यवाद।
2: प्रिविलेज
1: जी।
3: तो श्रोताओं, इसी के साथ 90 दशकों की आवाज आकाशवाणी हमारी यादों में, इस पर आधारित आज का ये विशेष परिचर्चा यही समाप्त होता है। हमें आशा है कि आकाशवाणी से जुड़ी यादें, अनुभव और बातें आपको पसंद आई होंगी। हमारे साथ

जुड़ने के लिए हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर मंजुला अनगानी और डॉक्टर आशीष चौहान का। श्रोताओं, हमें आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रही होगी। इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ इसी तरंग पर। तब तक के लिए जयदीप को दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद। नमस्कार।

0: ఇల్లు వాకిలి వ్యవసాయదారుల కార్యక్రమంలో ఈరోజు రాత్రి 7:15 విత్తన వారోత్సవాలు, రైతు నేస్తం వ్యవసాయ విస్తరణలో అందిస్తున్న సేవల గురించి, కొన్ని కార్యక్రమాల గురించి మనకు తెలియచేస్తారు డాక్టర్ ఎం శ్రీనివాసులు గారు. వార్తా పరిచయ కార్యక్రమం ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. రామ్ గోపాల్ గారు వారిని మనకి పరిచయం చేస్తారు. వికసిత భారత కార్యక్రమంలో 7:45 రెండవ విడత టీబీ ముక్త్ భారత్ అభియాన్ 100 రోజుల కార్యక్రమం గురించి ఆదిలాబాద్ జిల్లా క్షయ నివారణ అధికారి డాక్టర్ సి సుమలత గారితో పరిచయ కార్యక్రమం. పరిచయకర్త కె లెనిన్ గారు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్ర సమర్పణ ఆ కార్యక్రమం. ఆకాశవాణి సమయం 11:59 దాటి 55 సెకండ్లు అయింది. మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలోనూ, ఆ తర్వాత ఆంగ్లంలోనూ వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాథ్ మే కనకలతా. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए. श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की. प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया. अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था. इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है. समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया.
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके. महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए. साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही. इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा.
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया. गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने यह घोषणा की. केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं. राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की. गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं. श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है. भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी. भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है. दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की. ये बैठक कल पेइचिंग में हुई. बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई. आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में 2-2 मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 मौत हुई. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने प्रत्येक

0: मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Mr. Modi stated this while chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees across the railways, power and road sectors covering 9 states. President Draupadi Murmu has urged the police in the country to become more citizen-centric and sensitive while dealing with people, especially women, the poor and children. President Murmu was addressing the gathering after conferring the prestigious President's Police Gala on the Sikkim police during Alankaran Parade held in Gangtok.
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में
1: Meanwhile, Sikkim has been officially declared a fully literate state under the Ullas Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative. India and China reviewed the situation in border areas and expressed satisfaction with progress made in maintaining peace and tranquility. The two countries reviewed the situation during the 35th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, which was held in Beijing yesterday. The Ministry of External Affairs said the discussions were constructive and forward-looking. The two sides discussed issues pertaining to delimitation, border management, mechanism building and cross-border cooperation. The ministry said the Indian side stressed on early meeting of the next expert-level mechanism on transborder rivers. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah today held a breakfast meeting with cabinet colleagues at his residence in Bengaluru amid reports of a possible leadership change in the state. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar, who is reportedly being considered for the top post, was also present at the meeting. Cabinet ministers who attended the meeting said they would abide by any decision taken by the Congress High Command regarding a change in leadership in the state. In Bihar, 8 people were killed across the state following a wave of severe thunderstorms, lightning strikes and hailstorms. Chief Minister Samrat Chaudhary expressed grief at the loss of lives and announced ex gratia compensation of 4 lakh rupees each to the next of kin of the deceased. Today is the birth anniversary of great nationalist and freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar, popularly called Veer Savarkar. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah remembered the great leader on the occasion. Prime Minister Modi in his message said the courage and patriotism of Veer Savarkar will always inspire people. The Home Minister said, a fearless warrior of the freedom struggle, Veer Savarkar dedicated his entire life to the service of the motherland. Iran's Revolutionary Guards today said they targeted a U.S. base this morning in retaliation to

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
3: और जे रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओ आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
3: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
3: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
3: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है, है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओं, अब इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
3: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है।
2: जी,
3: इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
3: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
2: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
3: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने।
3: जी,
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
3: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
3: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
3: जी, ये बात तो है।
2: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
3: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
2: जी
3: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र

0: या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
1: जी
0: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
1: जी जी जी रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्मय को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे।

0: और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
2: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
3: बहन जी, डाकिया।
2: अच्छा, खोलते हैं भैया।
4: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
5: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
4: तो कोई बड़ा है घर में?
5: हाँ, घर पर माता जी है ना।
4: जी बुलाइए।
6: माँ।
2: हाँ।
6: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
2: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
4: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
2: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
6: माँ, माँ।
7: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
2: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
7: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
2: हाँ।
7: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
5: अरे वाह,
2: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
5: ऐसे नहीं,
6: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
7: अरे योगेंद्र।
2: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
5: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
2: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
5: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
0: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
1: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
0: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
1: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सके।

0: की।
1: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी, क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी।
0: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
0: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब, जी साहब।
2: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
3: चलो साथियों।
0: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लग

ने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी, यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और RS रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: NCERT వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది।

0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది
1: आदाब,
0: వార్తలు ఢిల్లీ.
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई 12वीं क्लास के इम्तिहान में जांच के अमल और ओएसएम निज़ाम में खामियों से मुतालिक तलबा की तमाम शिकायत को हल करने का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेस से अपील की है कि वो शहरियों पर ज़्यादा तवज्जो दें और हसास तबकों के तई ज़्यादा हसास रवैया इख्तियार करें। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान किया है। नायब वजीर आला डी के शिव कुमार उनकी जगह लेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंग बंदी कशीदगी का शिकार है, क्योंकि दोनों ही मुल्कों ने स्ट्रेटजिक तौर पर अहम आबनाए हुरमुज के नज़दीक एक दूसरे पर फिर से हमले करने शुरू कर दिए हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आज़म ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में मुनक़िदा अलंकरण परेड के मौके पर सिक्किम पुलिस को बावकार प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से नवाजा। इसके साथ ही सिक्किम इस एजाज से सरफराज होने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शुमाल मशरिक की तीसरी रियासत बन गई है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया कि वो शहरियों को ज्यादा अहमियत दें, नीज अवाम और ख़ासतौर पर ख्वातीन, गरीब अफराद और बच्चों के मामलों में हसासियत का मुजाहरा करें।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से साइबर जराइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डीप फेक से मुतालिक खतरात से निमटने की गरज से तैयार रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर जमहूरिया ने अमन कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से निमटने में सिक्किम पुलिस के किरदार की सताइश की। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर गैर मामूली खिदमात, नज्म व ज़ब्त और मुल्क के लिए खुद को वक्फ कर देने के एतराफ में पुलिस फोर्स को अता किया जाने वाला आला तरीन रस्मी एजाज है। इस दौरान सिक्किम को बाज़ाब्ता तौर पर एक मुकम्मल ख्वादा रियासत करार दे दिया गया है। यह ऐलान कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में गंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद के दौरान किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमलावरी की जरूरत पर जोर दिया और कहा है कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे की तरफ बढ़ना है और असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकत दारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोबर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में तेजी लाएं। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपए मालियत के रेलवेज, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वजीर आजम ने शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों पर, खासतौर पर शहरी इलाकों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्युनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फरोग देने के लिए रूफ टॉप शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया कि वधवन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कसीर मॉडल तरक्याती तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जहां हर तरह के ट्रांसपोर्ट को बिला रुकावट लॉजिस्टिक्स इको निजाम के साथ मरबूत किया जा सके। वजीर आजम ने दरियाओं को भामी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट केन बेतवा का जायजा

0: लेते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी ताबुन, बरवक्त मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निजाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमल आवरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मलिक।
1: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज तलबा को यकीन दहानी कराई कि सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE की जानिब से नए मुतारफ कराया गया ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निज़ाम एक तरक्की पसंद वसीला है जिसका मकसद ज्यादा शफाफियत को यकीनी बनाना है। जनाब प्रधान आज नई दिल्ली में CBSE अहदेदारों के साथ एक मीटिंग के बाद मीडिया के अफराद से गुफ्तगू कर रहे थे। OSM निज़ाम में खामियों और CBSE के 12वीं जमात के इम्तहान के लिए अजसर नौ जाँच के पोर्टल में तकनीकी खराबियों से मुतालिक तशवीश के सिलसिले में वज़ीर मौसूफ ने इस बात का एतराफ़ किया कि बाज़ मसाइल पैदा हुए थे। उन्होंने तलबा को यकीन दिलाया कि असरेनो जांच के जारी अमल के दौरान सभी शिकायतों का इजाला कर दिया जाएगा। जनाब प्रधान ने कहा कि ओहदेदार इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सभी तलबा के मसाइल को हल ज़रूर किया जाए और सभी सतहों पर जवाबदही को बरकरार रखा जाए।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया आज सहपहर गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। कर्नाटक के पार्लिमानी उमूर के वजीर HK पाटिल ने सिद्धारमैया की जानिब से तलब की गई ब्रेकफास्ट मीटिंग से रवाना होते हुए इस बारे में मुत्तला किया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया को कांग्रेस हाईकमान की तरफ से बताया गया है कि वो मुस्ताफी हो जाएं और वो बाकायदा लोकभवन में अपना इस्तीफा पेश कर देंगे। उन्होंने मजीद बताया कि DK शिवकुमार वजीर आला की हैसियत से ओहदा संभालेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंगबंदी को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब दोनों मुल्कों ने आबनाए हुरमुस के नज़दीक एक दूसरे पर बराह रास्त फौजी हमले किए, जो स्ट्रेटजिक के तौर पर काफ़ी अहमियत का हामिल है। आज सुबह सवेरे अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के 4 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया, जो उसके मुताबिक आबनाए हुरमुस के नज़दीक अमरीकी फ़ौज और उसके तजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा बने हुए थे। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया और अमन बरकरार रखने की गरज से की गई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों मुल्कों ने कल बीजिंग में भारत चीन सरहदी उमूर से मुतालिक मुशावरत और तालमेल के लिए वर्किंग निज़ाम की 35वीं मीटिंग के दौरान सूरत हाल का जायजा लिया। ईसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा या बकरा ईद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज आज सुबह अदा की, बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बकरीद की नमाज अदा करने के लिए लोग नज़दीकी मसाजिद में जमा हुए। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। रियासती सरकार की तरफ से सभी ज़िला पुलिस सरबराहान को एक एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई नई रिवायत शुरू ना हो और ममनुआ जानवर की कुर्बानी ना की जाए। DGP राजीव कृष्णा की हिदायत के बाद पुलिस ने हसास इलाकों में फ्लैग मार्च किया, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ये त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाया जा सके। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेस से अपील की है कि वो शहरियों पर ज्यादा तवज्जो दें और हसास तबकों के तई ज्यादा हसास रवैया इख्तियार करें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE 12वीं क्लास के इम्तिहान में जांच के अमल और OSM निज़ाम में खामियों से मुतालिक तलबा की तमाम शिकायत को हल करने का यकीन दिलाया। और कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान किया है। नायब वजीर आला DK शिवकुमार उनकी जगह लेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही, इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक

0: सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
3: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में

0: आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्फीन नहार।
1: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अज़हा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
2: आज श्रीलंका में ईद उल अज़हा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादेसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी

0: के चिंतापल्ली मंडल में धान खरीदारी मरकज का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 25 दिनों से खरीदारी का अमल रुका हुआ है, जबकि थैलों, लारियों और मजदूरों की कमी के बाद किसान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से फंड फराहम किए जाने के बावजूद रियासती हुकूमत खरीदारी में नाकाम हो रही है। म्यूक में जारी ISSF आलमी कप 2026 शूटिंग मुकाबलों में खवातीन के 25 मीटर पिस्टल फाइनल में शानदार कारकर्दगी दिखाने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ईशा सिंह को मुबारकबाद दी। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली ईशा सिंह की कामयाबी को उन्होंने हिंदुस्तानी शूटिंग खेल की तारीख का यादगार लम्हा करार दिया। वज़ीर आला ने कहा कि ईशा अपनी लगन, नज़्म ज़ब्त और साबित कदमी के ज़रिए लाखों नौजवानों के लिए एक तहरीक बन गई हैं। ISSF आलमी कप 2026 के खवातीन के 25 मीटर पिस्टल फाइनल में ईशा सिंह ने 43 हिट्स स्कोर करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। रियासत भर में मुसलमान बकरीद का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। ईदगाहों और मसाजिद में खसूसी नमाजें अदा की गईं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की, जबकि वज़रा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा और कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुकिंदर रेड्डी ने भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। भद्राद्री कोत्तागुडम ज़िले के बुडुगुट्टा ईदगाह में मुनक़दा ईद उल अज़हा की तकरीब में कोत्तागुडम के रुकन असम्बली के सांबा शिवाराव शरीक हुए। यदाद्री, भोनगिर, जनगांव, राजन्ना सिरसिला, करीमनगर और नागरनूल अजला में ईद उल अज़हा शानदार अंदाज में मनाई जा रही है। बकरीद के मौके पर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने गाय को कौमी जानवर करार देने के मतालबे पर मबनी प्ले कार्ड्स भी आविज़ा किए। ईद उल अज़हा के पेश नज़र निर्मल ज़िले के निर्मल और भैंसा शहरों में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। जगतियाल ज़िले के धर्मपुरी में ईद उल अज़हा के मौके पर मुनक़दा खसूसी तकरीब में रियासती वज़ीर अडलूरी लक्ष्मण कुमार ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि धर्मपुरी हल्के की मसाजिद और ईदगाहों की तरक्की के लिए फंड्स जारी किए गए हैं। रियासती वज़ीर विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि रियासती हुकूमत अकलियतों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए पाबंद अहद है। मंचरियाल ज़िले के चन्नूर असम्बली हलके में मुनक़द किए गए ईद उल अज़हा की तकरीब में रियासती वज़ीर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि चन्नूर में अकलियतों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी हैं।
1: ये सोमनपल्ली में 200 करोड़ से माइनॉरिटी SC BC 2000 बच्चों के वास्ते एक टॉप क्लास पब्लिक स्कूल के जैसा हॉस्टल के साथ इंटीग्रेटेड यंग इंडिया स्कूल भी वहाँ लगा रहे हैं। अपने बच्चे पूरे होने के बाद नेक्स्ट ईयर से वहाँ एडमिशन लेंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
0: आप आकाशवाणी से खबरें सुन रहे हैं। मजीद अपडेट्स के लिए हैदराबाद के इलाकाई खबरों के शोबे @AirNews_HYD को फॉलो करें और एयर न्यूज़ हैदराबाद चैनल को सब्सक्राइब करें। रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी और डी श्रीधर बाबू ने कहा कि फ्यूचर सिटी को दुनिया के लिए एक मिसाली शहर बनाना ही रियासती हुकूमत का अज़्म है। आज सुबह दोनों वज़रा ने फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट के इलाके का दौरा किया और फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी दफ्तर और यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की तामीराती सरगर्मियों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि फ्यूचर सिटी में हर फैसला और हर तामीर आलमी मेयार के मुताबिक होगी। लाखों नौजवानों को रोज़गार फराहम करना हुकूमत का बुनियादी मकसद है। रियासती वज़ीर सीतक्का ने कहा कि एटोरो नागरम में नाबालिग लड़की के मामले में गलत खबरें शाये करने वाले मीडिया इदारों को लीगल नोटिस जारी की जाएगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रेटिंग्स और सियासी मफादात के लिए एक नाबालिग लड़की की ज़िंदगी से खिलवाड़ को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बग़ैर सबूत के झूठे इल्ज़ाम आयद करने वाले अफराद को चाहिए कि अगर हकीकत में इनके पास कोई सबूत है तो पुलिस को पेश करें। सीतक्का ने कहा कि गलत तशहीर की वजह से लड़की का ख़ानदान ज़हनी उलझन का शिकार है। सनत नगर में ज़ेर तामीर टिम्स हॉस्पिटल को आलमी मेयार के मुताबिक जल्द अवाम के लिए दस्तियाब करने की हिदायत देते हुए वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने मुतल्लिका हुक्काम को ज़रूरी इकदाम करने का हुक्म दिया। वज़ीर ने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबों का मायना किया और जदीद तिब्बी आलात, लेबोरेटरी और ब्लड बैंक की सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने सिविल काम तेज़ी से मुकम्मल करने, मल्टी लेवल पार्किंग, डॉक्टरों के लिए हॉस्टल ब्लॉक्स, मरीजों के तैमदारों के लिए रिहाइश और दो कैंटीनों के क़याम की हिदायत दी। हैदराबाद महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक आइंदा 3 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो

सकता है। आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुल्क, भद्राचलम और दीगर अजला में बाज़ मकामात पर गर्म हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि दीगर अजला में गरज चमक, आंधी और बारिश की पेश कयासी की गई है। हैदराबाद के मुख्तलिफ कमिश्नरेट्स में खिदमात अंजाम देने वाले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदों को साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत की दावत दी गई है। मीडिया नुमाइंदों में खेलों का जज्बा और बाहमी दोस्ती को फ़रोग देने के मकसद से ये मुकाबले मुनक्कद किए जा रहे हैं। हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद मीडिया नुमाइंदों से कहा गया है कि वह कल तक अपनी दरख्वास्तें साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर में जमा कराएँ। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी कि रियासत के हर शहरी को मिलने वाली तमाम फलाही स्कीमों की तफसीलात एक ही कार्ड में शामिल करते हुए जामे फलाह कार्ड तैयार करें। वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि भीगा हुआ धान भी इमदादी कीमत पर खरीद कर किसानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। बीजेपी तेलंगाना के सदर एन रामचंद्र राव ने यकीन जाहिर किया कि तेलंगाना में जल्द ही बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत कायम होगी। और हैदराबाद महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। और अब खबरें ख़त्म हुई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धारमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साह ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज

वंशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भूमिका निर्व्यूढ़ा आसीत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य आरक्षक बलाय बोधितवती यत् आरक्षाः अधिकं नागरिकाभिमुखा भवेयुः। सहैव समाजस्य दुर्बल वर्गाणां विशेषतः महिलानां निर्धनानां बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः अद्य प्रातः गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरणं संचलने सिक्किम आरक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदाय संबोधितवती। तया राज्ये विधि व्यवस्थायाः पालने सहैव आपद प्रबंधने सिक्किम आरक्षकदलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: अत्रांतरे उल्लास योजनायाः अन्तर्गतं सिक्किम राज्यम् आधिकारिक रूपेण पूर्ण साक्षर राज्यत्वेन घोषितम्। घोषणेयं यावत् गतदिवसे गंगटोक नगरे राष्ट्रपतिः मुर्मुः इत्यस्याः गरिमामय उपस्थितौ सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे विहिता। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये जायमाना शिथिल युद्ध विरामावस्था इदानीं गंभीर संकटे समापतिता। यतः हि द्वाभ्याम् अपि पक्षाभ्याम् होर्मुज इत्यस्य समीपे परस्परं सैन्य आक्रमणानि कृतानि। अमेरिकी सेनायाः कथनमस्ति यत् तया ईरान देशस्य चत्वारि आक्रामक ड्रोन विमानानि निपातितानि, तथा च बंदर अब्बास क्षेत्रे स्थिते ड्रोन नियंत्रण केन्द्रे भीषण प्रहारः कृतः। अत्रांतरे ईरानस्य इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स इति दलेन अपि एतस्य प्रहारस्य प्रमाणत्वेन प्रोक्तं यत् प्रतिकार स्वरूपेण तैः अमेरिकी सैन्य शिविरे आक्रमणं विहितम्। कुवैत प्रशासनेन पूर्वमेव सूचितम् आसीत् यत् ते स्वकीये क्षेत्रे शत्रुपक्षस्य ड्रोन आक्रमणानां दृढ प्रतिकारं कुर्वन्ति। अस्याः सद्यो जातायाः सैन्य उत्तेजनायाः कारणेन वाशिंगटन तेहरान नगरयोः मध्ये युद्धविरामस्य विस्ताराय जायमानैः कूटनीतिक प्रयासैः सहसा महती क्षतिः अभवत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य पुनरेकदा अवैध प्रवासिनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षा सुदृढ़ीकर्तुं च सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां पुनरपि दृढ़तया प्रतिपादितवान्। गांधीनगरे 44.3 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां संबोधयन् श्री शाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः एकसप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षा बलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्म वार्षिक्याः अवसरे गृहमंत्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धांजलिं प्रदत्तवान्। गुजरात राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्री शाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रांतरे सः अहमदाबाद नगरे आगामीनां ओलंपिक क्रीडानां, कॉमनवेल्थ क्रीडानां, विश्व आरक्षक क्रीडानां, अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षा करिष्यति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अद्य CBSE इति द्वादश कक्षायाः मूल्यांकनं प्रक्रियायां सहैव एतस्य नूतन पटलाधारित अंकन प्रणाल्यां च जातानां प्राविधिक त्रुटीनां च संज्ञानं गृहीतवान्। मंत्रिणाम् एतेषां विसंगतीनां विषये छात्राणां शंका समानार्थं दृढ आश्वासनं प्रदत्तम्। शिक्षा मंत्री प्रोक्तं यत् इयं पटलाधारित अंकन प्रणाली पारदर्शितां सुनिश्चेतुं कश्चन प्रगतिशील उपायात्मक मञ्चः वर्तते। सः नवदिल्ल्यां CBSE अधिकारिभिः सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विधाय अनन्तरं

0: 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: सभी
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
4: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
3: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद विचार विमर्श आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत

0: 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई, जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत का लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत कुछ क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Countrywide.
1: सूरज जो जीवन का प्रतीक है, आज वही आग उगलता महसूस हो रहा है। धरती तप रही है, सड़कें जल रही हैं, हवाओं में ठंडक नहीं तपिश बह रही है। मई और जून की दोपहर अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक चेतावनी बन गई है। एक ऐसी चेतावनी जो हर उम्र, हर शहर और हर गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रही है।

0: नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव। आकाशवाणी के कंट्री वाइड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बढ़ता तापमान, बढ़ती चुनौती, हीट वेव। पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव ने जिस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया है, उसने स्वास्थ्य, कामकाज, खेती, बच्चों और बुजुर्गों सबके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम इसके खतरों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम उन लक्षणों को समझते हैं जो शरीर हमें समय रहते संकेत के रूप में देता है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस भीषण गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर प्रोफेसर और मेडिसिन विभाग के प्रमुख लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर अनुपम प्रकाश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत नमस्कार और सभी को नमस्कार, श्रोताओं को भी।
0: किन लोगों को हीट वेव से सबसे ज्यादा खतरा होता है, बच्चे, बुजुर्ग या बाहर काम करने वाले लोग?
1: जो ये ग्रीष्म लहर है या गर्मी की लहर है या हीट वेव जिसको आप कह रहे हैं, जिस समय जैसे ही तापमान बिल्कुल चरम सीमा पर है, इस समय सभी को ध्यान रखने की बात है। कोई अपने को ये नहीं समझे कि वो बच जाएगा, तो सभी को ध्यान रखना जरूरी है। जो कोई भी दोपहर में बाहर जाते हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए और दोपहर के अलावा भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, जैसे कि बच्चे हैं बिल्कुल खास तौर से कम उम्र के बच्चे, जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने ज्यादा अत्यधिक उम्र के लोग होंगे और जो लोग बाहर काम करते हैं, खास तौर से जो हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और समझ बूझ के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो इसमें अपने को समझे कि वो इम्यून है या उन्हें दिक्कत नहीं हो सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी जन लोग हैं, इवन जीव जंतु जो हैं, उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मियों में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हम बाहर से आते हैं, हमें लगता है कि धूप बहुत ज्यादा थी, ये उसके कारण हो सकता है, कल मैंने कुछ ऐसा खा लिया, हो सकता है कि उसी की वजह से हो रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वो कौन से लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
1: इसमें कई बार हमें पता नहीं चलता है कि क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी से जाकर के बाहर से आने में आमतौर पे सभी को जो है गर्मी लगती है, पसीना आता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो सकता है या थकान लग सकती है। लेकिन कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर अत्यधिक पसीना आए, क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि जब भी आपका गर्मी होगी तो पसीना ज्यादा आता है, इससे शरीर को ठंडा मिलती है। लेकिन आपको अत्यधिक पसीना आए, वो पसीना आना बंद ही ना हो, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। कमजोरी लगे, उठा ना जाए, चक्कर लगे, सर में दर्द लगे, आपको बदन दर्द लगे, मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर लगे और उठने लायक नहीं लगे आपको, अगर उल्टी जैसा लगे आपको और मांसपेशियों में कई बार दर्द होने लगता है, जैसे क्रैम्प्स होने लगता है, वो अगर ये सब चीजें आपको लगती हैं, इसके साथ अगर आप तवज्जो दें कि अगर पेशाब नहीं आ रहा है या कम आ रहा है पेशाब, ये सब लक्षण ऐसे हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं और इनमें दिक्कत होने की संभावना बढ़ सकती है अगर तवज्जो नहीं दी जाए, तो ये बहुत जरूरी है। सबको इनको आगाह रहना चाहिए कि इन सब चीजों में से कुछ भी हो तो फौरन ध्यान रखना चाहिए और अगर आराम नहीं आता है तो परामर्श लें चिकित्सक से।
0: लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़े डॉक्टर साहब, कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है या फिर बुखार की समस्या है, या कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत सारे जो हमारे कामकाजी लोग हैं वो बाइक से डिलीवरी करने जाते हैं या बाइक से ऑफिस जाते हैं, ऐसा लगता है कि चक्कर सा आ गया, आंखों के सामने धुंधला सा आ गया, वो ऐसे समय में क्या करें? क्या ये वार्निंग साइन है डॉक्टर के पास जाने का, या घर पर आराम करके राहत मिल सकती है?
1: अगर आराम नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपको शुरुआती लक्षण लगते हैं, सर में दर्द लगता है, थकान लगते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि जब तक मजबूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें। लेकिन अगर मजबूरी ही है तो फिर आपको अगर जाना है और आपको ये लक्षण लगते हैं कि सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी आ रही है या मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, चक्कर लग रहा है, तो इन सब चीजों में फौरन आप अपना अगर जा भी रहे हैं कहीं तो वो स्थगित कर दें या रुक जाएं और ठंडी जगह पे जाएं या किसी पेड़ की छांव में रहें और पानी ज्यादा लें। अगर आप संभव हो तो नमक डाल करके, थोड़ा नींबू डाल करके जो है शिकंजी टाइप बना करके आप लें, या ORS का घोल तो हर जगह मिल जाता है, तो ORS का घोल बना करके पानी लें। इसमें नमक लेना जरूरी होता है, क्योंकि नमक जो है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक जरूर लें, क्योंकि पसीने में नमक भी काफी लूज कर जाते हैं। आराम करें और जब तक बिल्कुल ठीक ना लगे तब तक ना जाएं। अगर

0: तापमान जैसा आपने कहा बुखार हो गया है, बढ़ रहा है, तो ठंडी पट्टी भी रखनी पड़ेगी, और अगर बुखार में राहत नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।
1: इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि गर्मी के मौसम में जब तापमान दिल्ली में तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस है, और जो श्रोता देश के अलग अलग हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वहां भी तापमान कमोबेश 40 से ऊपर है। ऐसे में खाने पीने की आदतों में क्या बदलाव करना जरूरी है?
0: ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रहन सहन और खान पान पर ध्यान दें। साल भर ही देना ज़रूरी है, गर्मी के मौसम में और ज़रूरी है। इसमें जब प्यास लगे तब पानी पीने की जगह हर थोड़ी देर पे पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो। और सिर्फ पानी नहीं, हल्का सा जैसे मैंने बताया नमक डाल करके, या छाछ है, नमकीन छाछ है या दही है, ये चीज़ें लें। फल लें, आजकल गर्मियों में बड़े अच्छे फल आते हैं, और जूस वाले फल आते हैं जिनमें रसीले फल होते हैं, जिनमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा मिल जाती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें आप लें जिससे कि आपको फायदा रहे, पानी की कमी ना हो और तत्व भी मिले।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जैसे ही गर्मी आती है, चाहे बच्चे हों या युवा हों, वो कोल्ड ड्रिंक की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीने को बहुत आतुर होते हैं। क्या ये शरीर के लिहाज से स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य के लिहाज से सही है?
0: देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स है या कैफिनेटेड बीवरेजेस जिन्हें हम कहते हैं, या चाय, कॉफी, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसमें ऐसे ही मदिरा, ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसमें पानी होता है, लेकिन इन सब चीजों से पेशाब आने की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर पेशाब ज्यादा होगा तो आप पानी ले भी रहे हैं तो वो उसमें निकल जाता है, तो इसलिए उससे आपके शरीर को पानी की आपूर्ति नहीं होती है, तो ऐसी चीजें लेने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा मीठे पदार्थ हैं, कई लोग फ्रूट जूस लेते हैं, तो वो लेने भी देखना पड़ेगा आपको कि आपके उससे भी कई बार जिनको शुगर की टेंडेंसी होती है, शुगर होती है, उनके लिए वो फायदेमंद नहीं होते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। ठंडा जो पानी आप कह रहे हैं, ठंडा पानी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आदमी बाहर से आता है बिल्कुल गर्मी से और एकदम से ठंडे पानी का सेवन करता है, तो कई बार जो है तापमान के बदलने से जुकाम, खांसी, नजला या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो बाहर से आए तो 2-3 मिनट वेट करके, 4-5 मिनट वेट करके, उसके बाद जब आपका तापमान बाहर 45 डिग्री से घर के तापमान 30-35 डिग्री के आसपास आ जाए, तो फिर आप थोड़ा ठंडा पानी लेने की सोच सकते हैं।
1: एक और व्यवहारिक सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं देश भर में, और बच्चे छुट्टियां मनाने या तो नानी घर चले जाते हैं या अपने गांव चले जाते हैं, वहां उन बच्चों के साथ जो खेलते हैं उनके नाना नानी दादा दादी, तो सवाल यह है कि बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये बहुत ही जरूरी है, बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर, मतलब यंग लोग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, डेढ़ उम्र के लोग भी हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि धूप में बिल्कुल भी नहीं निकले। जो पीक आवर्स होते हैं, जो कहते हैं 12 से 3 या 12 से 4 का है, उस समय जो है आप बिल्कुल भी धूप से बाहर नहीं निकले घर से, क्योंकि अगर धूप में नहीं भी जा रहे हैं तो भी बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, और गर्म हवा से ही आपकी जो त्वचा है उसपे से वेपोरेशन, काफी पानी निकल जाता है। दूसरी चीज है, अगर खेलना है या पार्क जाना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ग्रीष्मकालीन के अवकाश में हम लोग भी यही सोचते थे कि जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, मतलब कि प्रातः सवेरे जल्दी जाए, सूरज जब तक धीमा है तो 6-7, 7:30 बजे तक आप घूम करके आए, या शाम को भी 6-7 बजे के बाद आप जाए। धूप रहते, मतलब रोशनी रहती है शाम को भी 7 बजे तक, तो आप 6 बजे के बाद आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जाएं तो साथ में पानी जरूर रखें और कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के जाएं। अगर धूप है उस समय तो छतरी का ले, जिससे कि आप डायरेक्ट सनशाइन से कम सूरज की रोशनी से बच सकें।
1: बहुत सारे लोग घरों में हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन की समस्या है, या फिर वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या फिर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, जिन्हें हर 10 दिन 15 दिन के पास डॉक्टर्स के पास जाना होता है। हीट वेव और बढ़ते तापमान के बीच कई बार उनके मन में ये सोच आती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, अगली बार जाएंगे वही दवाई कंटिन्यू कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका?
0: देखिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जैसे आप बता रहे हैं, गुर्दा रोग के जो मरीज हैं, इनको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पानी का जो है बहुत ज्यादा सेवन नहीं कर सकते हैं, और अगर सेवन करते हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें दिल की बीमारी नहीं है या किडनी की रोग नहीं है, तो ब्लड प्रेशर के और शुगर के लोग ले सकते हैं, लेकिन इनको

ये पानी लेंगे तो मीठा नहीं लेना है और नमक डाल के नहीं लेना है, तो इसलिए इनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का। और जो निश्चित नियमित रूप से जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो उसको थोड़ा या तो अप्रैल से पहले रखें, और फिर मई में एक बार जाना पड़ेगा, तो जैसे मैंने कहा कि सवेरे जाएं या शाम को लें अपॉइंटमेंट, और जाकर के एक बार दिखा के जरूर आएं, क्योंकि कई बार जो है दवाएं भी इनकी थोड़ी बदलनी पड़ती हैं, खासतौर से जो गुर्दे के रोगी हैं उनमें भी। और

0: तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है, लेकिन गर्मी में ना जाए। और बीच बीच में कई दिन ऐसे आते हैं जब बारिश हो जाती है भारतवर्ष में, तो उन दिनों नहीं, तो अपॉइंटमेंट लेकर के जा करके डॉक्टर को जरूर दिखा करके आए।
1: डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल तो ये है कि ऐसे मौसम में वो कौन सी लापरवाहियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए?
0: देखिए, धूप में बिल्कुल भी ना जाएं जहां तक संभव हो। दूसरी चीज, पानी जरूर साथ में लेकर के जाएं, और अगर धूप में जा रहे हैं तो आप जरूर छाता लेकर के जाएं या गमछा या कपड़ा लेकर के जाएं, जिससे कि आप अपने शरीर को ढक सकें। ये बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगी, बस 5 मिनट में होकर के आते हैं। वो कब समय बढ़ जाता है या कब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है और हमारा शरीर उसमें जो लपेट में आ रहता है, गर्मी की या लू की लपेट में, वो हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है।
1: और ओवरऑल आप क्या हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है और महानगरों में एसी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बढ़ते तापमान और हीट वेव के बीच क्या संदेश देंगे?
0: मैं सारे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि जितना भी हो सके, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व स्तर में जो गर्मी हो रही है, तो उसके लिए जो आपको जरूरी है वो ये है कि हरियाली ज्यादा रखें। तो पेड़ ऐसे बोएं और पेड़ों को काटें नहीं जो कि पेड़ आपको छाया देते हैं। तो छायादार वृक्षों का आप जरूर लगाएं, पार्क में या जहां भी जगह मिले उसको आप लगाएं। दूसरी चीज है कि कभी भी हम कहीं जाते हैं, चाहे पहाड़ों पे या कहीं और भी, तो वहां पे भी अपना जो पर्यावरण से बचाव है या उसको बचाव करने की हमारी क्षमता है, उसको हम ध्यान रखें। घरों में भी हम लोग, जैसे आपने कहा, एसी यूज करते हैं, तो आप उसका तापमान जो है उस हिसाब से रखिए जिसमें कि बहुत ज्यादा बिजली या ऊर्जा नहीं इस्तेमाल हो, और बिजली भी जहाँ इस्तेमाल नहीं हो रही है वहां बंद करके रखें। ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने योग्य है। पानी का भी हमें बचाव करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसा आपने कहा आनंद जी, ये हमें बहुत जरूरी है कि हमारे श्रोता इनको ध्यान दें। अगर हम पानी का बचाव कर सकते हैं, कहीं बह रहा है तो उसको रोक सकते हैं, तो इससे पर्यावरण को मदद मिलेगी।
1: जी हाँ, छोटे छोटे बदलावों से ही हम एक समग्र परिवर्तन कर सकते हैं। गर्मी सिर्फ मौसम का बदलना नहीं रह गया, ये समय है सतर्क रहने का, अपने शरीर की आवाज सुनने का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने का। हीट वेव हमें यही सिखाती है कि छोटी सी सावधानी भी बड़ी सुरक्षा बन सकती है। समय पर पानी पीना, धूप से बचना, लक्षणों को नजरअंदाज न करना और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना, ये छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगी बचा सकती हैं। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए हमारे श्रोताओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
1: उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इस बढ़ती गर्मी के बीच खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रह पाएंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide. Insights. This is Akashwani. In the program Insights, now we bring you a discussion on Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. The participants are Abhijit Deb, senior journalist, and Ramya, anchor.
3: Good evening, listeners. Welcome to the weekly program Insights. Today, we will be discussing about the Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. To shed more light on this, we have with us senior journalist from Assam, Abhijit Deb. Welcome to the program.
4: Thank you.
3: Before we begin the program, let's listen to what Chief Minister Hemant Biswa Sarma said after the passing of the bill.
5: Assam Assembly has adopted Uniform Civil Code 2026. Assam will be the third state after Uttarakhand and Gujarat to adopt Uniform Civil Code. Adoption of Uniform Civil Code was one of our commitments in our election manifesto. We are very happy and delighted that in the first session of Assam Assembly, immediately after the election, we could adopt this historic bill. Now this bill will go for assent of Mahamohim Rashtrapati ji. Once we get the assent, the bill will be implemented.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ DK शिव कुमार के समर्थकों द्वारा खुशी

0: बनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनके नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।